कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मर निर्मल पूरन पुरख विधाता रहा नानक प्रभ अविनासी ताकि सेव न बिरथी जासी आनंद करे तेरे दास जप पूरन होई आसा बिलावल महला पंजवा ताती वाह न लगाई पार ब्रह्म शरणाई चाओ गिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया।

गगन मैथाल राव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होय पवखण ना तेरी आरती अनहता शब्दवा जंत तेहरी रहाओ सहस्ताव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त न नायक तोही सहस पाद बिमल नान एक पाद गंध बिन सहस्ताव गंध एव चलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिस दै चानन सब मैं चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत सुभाव है सो आरती होए हार चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदनो।

मैं बेनती करना, चेले ते हुक्म किया जा सकता है, चेले को बेनती करने की लोड़ है, चेले देते हुक्म किया जा सकता है, नहीं उसे बेनती कर देने। फिर चेला नहीं कहते, मित्र कहते, मित्र कहते हैं। जे किसी के अंदर कुछ खामियां देखिया ने, प्रबल हंकार देखे, उन्हों भी समझाने का ढंग की है, साधो मन का मान त्याग। कहना साधु है, हंकारी नु साधु कहने की लोड़ की है? नहीं, कहना साधु। जे दूजे का हंकार होना, हंकार का मतलब की है? अहं, मैं बहुत वड्डा, अगला छोटा। अगले नु छोटा करना जे गुनाह है, अगले नु छोटा समझना भी गुनाह है। गुस्ताखी माफ। बहुत सारे लोग दूसरे नु छोटा कर देते नहीं, छोटा समझ दे, समझ। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब गुरु अर्जन देव जी महाराज दूजे नु छोटा समझते भी नहीं, साधु कहते। ठीक है, हंकारी है, बड़ा मन विच गुमान है, पर फिर भी उन्हों साधु करके मुखातब करना है। साधो मन का मान त्याग। अक्सर मैं अर्ज करता हूं ना, हरिद्वार दे ब्राह्मणा ने जब पूछ लिया गुरु नानक देव जी महाराज नूं, ई जो बड़ी सुंदर रबाब वजांदा है, थानू हरी जस सुणांदा है, ये थोड़ा चेला है? महाराज कहण लगे, नहीं, मेरा चेला नहीं है। फिर नौकर है, सेवक है? नहीं, मेरा सेवक भी नहीं। हुण यही भाषा जानदा सी ब्राह्मण ज्ञानी। जितना वड्डा ज्ञानी होवेगा दूजे नूं अज्ञानी समझेगा, छोटा समझेगा, छोटा समझेगा। सब तो प्रबल हंकार ज्ञान दा हुंदा है, उस तो बाद शक्ति दा हुंदा है, धन दा हुंदा है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। कहिंदे ने एक फल दा इक्को ही बीज आउंदा है, एक बीज दे च इक्को ही फल पैदा हुंदा है। अमरूद दे बूटे नूं अमरूद लगदे ने, अंब नहीं, ते अंब दे दरख्त नूं अंब लगदे ने, केले नहीं। कणक दे चों कणक पैदा हुंदी है, चने नहीं। चणियां दे चों चने पैदा हुंदे ने, मकई नहीं। पर हंकार दे ते हजारां बीज ने, ये बहुत सारे बीजां तो पैदा हो जाता है। किन्ने बीजां तो पैदा हो जाता है, कुछ एक दी गिनती सानू भगत रविदास ने कराई है। भगत रविदास जी वो कहिंदे ने, हम बड कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं छोटा मोटा कवि नहीं हां, बहुत वड्डा कवि। तो जितना वड्डा कवि है यकीन जानो उन्ना ही हंकारी है। मैं बहुत नेड़े देखे ने, चाहे वह हिंदी दे कवि ने, पंजाबी दे कवि ने, चाहे उर्दू दे शायर ने, दूजियां नूं पैरां दी जुत्ती समझदे ने, पैरां दी खाक समझदे ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम बड कव, मैं छोटा मोटा कवि नहीं, बहुत वड्डा कवि। हम बड कव कुलीन, कुल मेरी कुल वड्डी है, इस वास्ते मैं वड्डा। मेरी कविता महान है, इस वास्ते मैं महान हां। कविता नाल अपनी महानता जोड़ ली, दूजे नो तुच्छ। कुल दे नाल अपने नो वड्डा समझ लिया, दूजा कुछ भी नहीं। हम बड कव कुलीन, हम पंडित,

गुरु घर विच प्रचार दे तीन माध्यम मने गए ने, कीर्तन, कथा और ढाडी प्रसंग। कीर्तन बंदगी है, कथा गुरबाणी दी विचार है और ढाडी प्रसंग इतिहास दी रूपरेखा दा चित्रण है। मेरा स्वभाव कुदरत ने और गुरु दी बख्शिश द्वारा गुरबाणी विचार दा बनया है कि ए विचार समूह घरां विच और दूर दूर तक लोकां नूं सुनाई देन, तां उन्हां दी प्रेरणा नाल मैं ए कैसेट टेप रिकॉर्ड कराए ने, जो पंज हैं जिन्हां विच वक्ख वक्ख गुरबाणी दे मजमून ने, अलग अलग विषय ने, और इन्हां पंज कैसेट दे विच मैं गुरबाणी दी जेड़ियां जरूरियां विचारां सन गुरु दी बख्शिश द्वारा संगतां दे सामने पेश कीतियां ने। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशीलं ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं।

कर्तापुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद। मनुख दी सिरजना विच परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी पूरी सियाणप पूरी बख्शिश तो कम लिया। मनुख दा एक एक अंग बड़ा कीमती है, एक एक नस, एक एक रोम और एक एक इंद्रे दी अपनी खास महानता। लेकिन ए दे चों शरीर दे इस बनतर दे चों चार हिस्से ऐसे ने जिन्हां दी व्याख्या भारत दे ऋषि मुनिया ने बड़े सोहने ढंग नाल कीती है। प्रथम सिर, दूसरा बावां, तीसरा पेट और चौथा चरण पैर। सिर दी अपनी महानता है, हत्थां दी अपनी गल है, पेट दी अपनी दुनिया है और पैरां दी अपनी खास होंद है। इन्हां चारां करके ही साडे देश दे च वर्ण वंड होई सी और चार वर्ण मन ले गए सन। चार वर्ण ब्राह्मण, खत्री, वैश और शूद्र।

मेरे नसीब जोर कर गए, गुरु गोबिंद सिंह मेरा यार बन गया, यार नू पुत दे के आया, ओदे बदले यार ने केस दे दिते। फिर अर्ज इनू भाई नंद लाल साहब दियो शेर, दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसारे। ए परी लफज दर्त पुरी नहीं नू पढ़ना, परी परियां नहीं होंदिया जेडिया, कहने बड़े हुसीन परियां। ओ वाह वाह भाई साहब कहने लोको का दिया परियां दे मुआं दिया गल कर दे, एक बारी मेरे गुरु गोबिंद सिंह दा चेहरा देखो, एदे सरूप दे सामने परियां दी भी कोई कीमत नहीं। मेरी फिर बेनती है, दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसारे मां, हर दो आलम कीमते यक तारे मुवे यारे मां। मेरे माही दे एक वाल दे विच एक जुल्फ दे विच दीन ते दुनिया दोनों बजे हुए। मैं आपनू बेनती करा मां ने केस पाले। भाई तारू सिंह अमृत तारीख है, आप हलवंद है जी, शाम नू तिन्ने मां ते दोनों भैन भरा तिन्ने बैठ के सिमरन करदे आ कीर्तन करदे आ, ते पिंड विच इन्ना सन्मान जी की हिंदू की मुसलमान। मैं अगे अर्ज करांगा हर बंदा भाई तारू सिंह नू रज के सन्मान दिंदा, इथो तक जिहड़ा मैं पिंड सिंहपुरा कहा ना नेड़े, ए नवाब कपूर सिंह दा पिंड सी जिहड़ा सिंहपुरी ने, फैजलापुरी जी दी मिसल सी ना, ए उन्हां दा पिंड है जी। इलाके दे जिन्ने चंगे जीवन वाले ने भाई तारू सिंह दा बहुत सन्मान करदे। अज शाम नू भाई साहब आए, सारे बाणी पढ़ के तिन्ने जने खटे, ते मां नू कहिंदा मां अज दुबारा फिर आनंदपुर साहिब वाले दिन आ गए। उन्हें पुछया जी की मैं थोड़ा जी इतिहास तां लै लिया अज विचार नू विराम दे के, क्योंकि कल मैं बाबा जी का जिक्र किया सी, अज एक गुरु हरकृष्ण साहब का अगले हफ्ते पुरब आना। भाई साहब कहने मां आनंदपुर आ गया, पुत की समझी नहीं, कह लगी अज मैं सिंह देखे ने कचहरे पाठे ने, सची मुची लीर बन गए ने, गातरे पाठे ने, रोटी नहीं मिलती खेतां चा ही लंघे ने। मां अगो कहिंदी पुत मेरिया पता मेनू भी है, पैरां च जुत्ती नहीं पर सिदक उन्हां नू, जिहड़ी गल मैं सबर कही सिदक उन्हां नू कंडियां दी छालियां दी पीड़ नहीं होण दिंदा, उन्हां दे तन ढक्कण नू कपड़े नहीं पर सदक ते गुरु दी रजा उन्हां नू सर्दी गर्मी नहीं लगन दिंदी, नींद नहीं कई कई दिन पूरी हुंदी तुरे रहिंदे आ। पुत मेरिया सबर ते सिदक उन्हां नू अपनी गोद विच समा दिंदा, उन्हां नू रोटी नहीं मिलदी ढिड विच कड़लां पैंदियां ने पर सिदक उन्हां सिंघां नू भुख नहीं लगन दिंदा। कहिंदा मां आपां की कर सकने आ सेवा वास्ते, जिवें भाई साहब कह के गए किन्ना उत्थे चल रहा है। वेखो असी किसे दे विरोध विच नहीं भी फलाना धर्म की कर रहा है, साडे प्रबंध दियां नलैकियां करके सब कुछ हुंदा पिया। उत्थे एडा वड्डा बजट होवे, हजारां एकड़ जमीन कमेटी कोल होवे ते फिर भी कुछ ना कर सके, इहदे विच तुसीं सारे इस गल तो जाणो क्योंकि इहनूं कल्पन दी लोड़ नहीं। वैसे साडी इच्छा है जिवें भाई रजिंदर सिंह कह के गए, मैं चाहना 10-15 प्रचारक पैसे कट्ठे करन लई नहीं, उहनां नूं पिंड दित्ते जाण तहसील पद्धर ते ब्लाक पद्धर ते, ते आ वखरेवा ए फलानी जथेबंदी जी फलाना जथा जी फलाना, इस चीज नू खत्म करो। जे सिखी बजानी सिर्फ एक पंथ ते गुरु ग्रंथ दी गल करो, मेरी बेनती है ता बचेगा, जे नहीं ते साडी सारी ऊर्जा जेड़ी एक दूजे नू ठिब्बियां लान ते लगी है। सच्ची जी एक छोटे जे गुरुद्वारे तो लैके पूरे पंथ तक लै लो, इस सच्चाई असि दूजे नू थला लाना चाहने आ, एक दिन किसी थंदे लांदे लांदे आप ही थले लग जांदा है बंदा। नहीं इहदे विच उच्ची सोच लैके तुरिए, मेरी मंजिल की हो प्यारे हो, आप कुल्लू कलूहारे वड्डे च कुपरेड़े सरदार चरण सिंह ने कहा, अपने रणजीत सिंह दे दादे ने भी मिसलां वंड के आपां लड़ीए आपो अपनी जथेबंदी, जस्सा संघालो वालिया खून नाल भिज्जा होया तकरीबन 22-19 फट लगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਲੜੋ, ਪੰਥ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਜੇ ਪੰਥ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਬਣਾਣੀਆਂ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਤੁਰ ਖੜ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਦਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਮਾਂ

ही पाए पधारे। दीत फिरै सब देश दिसान को, बाजत ढोल मृदंग निगारे। गुंजत गूढ़ के जान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे। भूत भविख भवान के भूपता, कौन गने नहीं जात बिचारे। श्री पद श्री भगवान भजे बिन, अंत कौ अंत के धाम सिधारे। तीर्थ नहान दयाद मंदान, सो संजम नेम अनेक बसिख। भेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेख। पावन आहार जति जत तहार, सब सुबचार हजार क देख। श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक ना देख। शुद्ध सपाह दुरंत दुबाह, सुसाल सनाह दुर्जान दलेंगे। भारी गुमान भरे मन मैं, कर पर्वत पंखले न हलेंगे। तोर अरीन मरोर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे। श्री पद श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार, अबिचार हिसार की तार पशैया। तोरत देस मलिंद मवासन, माते जान के मान मलैया। गाड़े गढ़ाण के तोड़ नहार, सो बातन ही चक चार लवैया। साहिब श्री सब को सिर नायक, जाज का नेक सो एक दिवैया। दानव देव निंदन साचर, भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं, पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जाल तुहन, पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह परसान, फिरै जाग सतर सब अवलोक चपेंगे। मानव

सारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो के मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सहबत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार सात नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनो संत हो सब तरहो बेयारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूर तुद वस कीते काल कंटक मारिया।

वै आव संत प्यार हो अकथ की करह कहानी करह कहानी अकथ केरी केत द्वार पाई है। तान मान तान सब साब गुर का हुक्म मन्ने पाई है हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गाओ सच्ची बाणी कह नानक सुनो संता हो कथे व कथ कहानी ए

च समाले। आगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किना तेरा, अपना आप तू जान हे। जी जंद सब खेल तेरा, क्या को आख वखाना, ए आख हिता वेखा हे, सब तू है जिन जगत उपाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। सुर नार मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा की नी, सच्चा मन वसाया। जी अजंत सब तुद उपायक, वेख परसन आया, लाभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनो आप दुठा, तन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता, हकेरी बिखम मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार तज त्रे संधा, बहुत नाही बोलना। खने आहो तिखी वाल हो निकी, एत मार्ग जाना, गुर प्रसाद जिनी आप तजिया, हर वासना समाणी। कह नानक चाल भगता, जुग हो जुग निराली, जिहो तू चलाए हो तिव चलह स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए हो तिव चलह, जिना मार्ग पावहे, कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा ते आवहे। जिसनु कथा सुनाए हे अपनी, से गुरद्वारा सुख पावहे, कह नानक सच्चे साहिब ज्यों भावै तिवै चलावहे। एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया, एहो तिनकै मन वसिया, किंत रोहो लिखिया आया, एक फिर कनेरे कर हैं गल्ला, गली कने न पाया। कह नानक शब्द सोहिला, सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहज स्यों, पवित संगत सुभाइया। कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन पसाया, कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै, मन सहजै सहसा ना जाए, न जाए सहसा कितै संजम, रहे करम कमाए, सहसा जीव मलीन है कित संजम धोता जाए, मन धोवहु शब्द लग हो, हर सो रह हो जित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एह सहसा इव जाए, जियो मैले बाहरहु निर्मल, बाहरहु निर्मल जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जूवै हारिया, एह तसना वड्डा रो।

तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा महम कोई न जान तुमरा यन ऊचे ते ऊचा सगल समगरी तुमरे सूतर तारी तुम ते हो ए सु

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन विच एक अटल नियम रखे है, हर जीव नू हर जीवन नू तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है। चाहे वो पत्थरां दा जीवन है, चाहे बनस्पति, चाहे वो पशुआं दा जीवन है, चाहे पंछियां दा, चाहे वो मनुखां दा जीवन है। क्योंकि इस प्राकृतिक मंडल दे मनुख जीवन दी शिखर है, जिंदगी दी बुलंदी है। इसनों धरती दा सरदार आखे है गुरु नानक देव जी महाराज ने, अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। इसनों अशरफुल मखलूकात आखे है, अगर जीवन नू नापांगे तो फिर इस प्राकृतिक मंडल दे मनुख तो सब कुछ थल्ले ही है, पिछे ही है। पिछे लई शब्द है संस्कृत देच पाश, जो पिछे रह गए पाश देच रह गए पशु। कौन पशु? जो पाश देच रह गए पिछे रह गए। तो मनुख तो पिछे है सारा पशु जगत, और इस पाश जगत देच इस पशु जगत देच चौपाए जानवर आ जाते ने, पंछी आ जाते ने, वनस्पति आ जाती है, हथा के कुछ जड़ जीवन पत्थर भी आ जाते ने। क्योंकि गुरबाणी ने इन्हां नूं भी यौन मनिया, कई जन्म सैल गिर करिया, कई जन्म गर्भ में करिया, अनंत जन्मा तक अनंत काल तक ऐ मनुख तू पत्थर भी रहे है। तो पत्थर दी जिंदगी भी पौगी है। अचेत सुन, तो जितना इस पृथ्वी दे जीवन है मनुख तो पिछांदा या मनुख, ये तीन तरह दे पड़ाव तो लंघदा है। और इन्हां तीन पड़ावां नूं नाम दिता गया है बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। चाहे वनस्पति है, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हां ते झात मारांगे दिस पैणगे कुछ ऐसे जो बिरध ने, तर्जे जिंदगी दसेगी बिरध ने, तर्जे जिंदगी दस देगी युवक ने जवान ने, आकार विचार ही दस देंगे बच्चा है बालक है। ये बचपना जवानी बुढ़ेपा सिर्फ मनुखी तलते ही नहीं, पंछियां देच भी ने, पशुआं देच भी ने, पक्षियां देच भी ने, और पत्थरां देच भी ने। ऐसे पहाड़ ने बुढ़े हो गए, जैसे सतपुड़े नु कहंदे ने बिरध हो गया, ऐसे भी पहाड़ ने जो जवान ने जैसे कि हिमालिया, पर ऐसे भी टीले जे खड़े ने उसर रहे ने उच्चे हो रहे, जिन्हां नु कह के देख के ये आखना पैंदा है इते बच्चे ने। कुछ अजे प्रकृति दे गर्भ दे भी ने उभरणगे, समा लगेगा। लेकिन गल ते अशरफुल मखलूकात मनुख दी है, जो धरती दा सरदार है, गल ते इस दी करनी है। यही एक जीव है जो एक तरह दी जिंदगी नहीं जीवंदा, कई तरह दा जीवन जीवंदा है। इसका सामाजिक जीवन है, इसका कुछ राजनैतिक जीवन है, इसका कुछ अध्यात्मिक जीवन है। पूर्ण पुरुख उसनों कहते हैं
जो सामाजिक तल ते पूरा है, राजनैतिक तल ते पूरा है, धार्मिक तल ते पूरा है। बड़ा सोहना शब्द है गुरबाणी दा, पूरन पुरख, मुकम्मल इंसान, पूरन पुरख। वो पूरा है जिसका सामाजिक जीवन पूरा है, वो पूरा है जिसकी राजनैतिक सोचनी पूरी है, वो पूरन है जो धार्मिक तल ते पूरा है। ये असी किस तरह नापांगे कि इना जिंदगी देच भी, इस तरह की जिंदगी देच भी समाज, राजनीति ते धर्म देच भी बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, बुजुर्गी है। शरीरक बचपना अखा नाल देखिया जाता है, समाजिक बचपना देखना है तो दिमाग नाल देखना पड़ेगा, अंदर दी अख नाल देखना पड़ेगा। शरीरक जवानी देखनी है अखा नाल दिखाई दे जाती है, जवान है। पर किसी का राजनैतिक तल ते बालग होना देखना है तो फिर अंदर दी अख चाहिए, अंदर दी सूझ चाहिए। कोई धार्मिक तल ते पूरा है इते वेखण वास्ते पूरी अख चाहिए अंदर दी, पर कोई शरीरक तल ते बुजुर्ग है, पूरा है, बुढ़ा हो गया है, इते अखां दा विषय है, अखां ही दस देंदियां ने ये बुढ़ा है, लेकिन अख ए नहीं दस सकती कि धार्मिक तल ते किथे खड़ा है, अख ए भी नहीं दस सकती कि समाजिक तल ते किथे खड़ा है, अखां ए भी दसण विच असमर्थ ने कि ए राजनैतिक तल ते किथे खड़ा है, किथे अंदर दी अग खोलनी पेगी। पर अक्सर एक बदकिस्मती रहिंदी है, अंदर दी अग अक्सर मनुखां दी बंदी रहिंदी है। बाहर दी अखां ए दो ने, अंदर दी अख वो एक है, और वो मनुख दे अंतिशकरण नूं वेख सकदी है, वो प्रकृति दे अंदर झाती मार सकदी है, वो अख बहुत गहरा वेख सकदी है। ये अखां इतनियां गहराई तक नहीं जा सकदियां, पर देखण दे चाहुंदा है। एक दिन ये दो अखां भी हमेशा लई बंद हो गईयां, वो अख खुली ना, दोहे दिवे बदे ना, मलक बहठा आए गढ़ लीता घट लुटेया, दीवड़े गया बुझाए। बाबा फरीद कहंदे ने, आया एक दिन मौत दा मलक, अपने नाल ऐसा तूफान ले आया, दो अखियां दे दीवे बुझा गया। मैं ते कोशिश करदा रहा अंदर दे दीवे च तेल पाण दी, वट लबण दी, जलाण दी कोशिश करदा रहा, ओ ते जल ना सकया, ए दो बुझ गए। जीवन अंधकार में ही हो गया, जीवन मसिया दी रात बन के रह गया, जबकि जिंदगी मिली सी नूर होण लई, प्रकाश होण लई, चानण होण लई, इते अंधकार बन के रह गए। ओ जद तीसरी अख खुल जाए तो ऐसे पुरुष नु कह दिता जांदा है, त्रैनैनं, तीन नेत्रा वाला, त्रिलोचन, लोचन अखा नु कहंदे ने, त्रिलोचन, इहदे कोल तीन नेत्र ने, इहदे कोल तीन अखा ने। अक्सर हर मनुख नु असीं कह सकदे हां दोए लोचन, दोए लोचन। त्रिलोचन जो हो गया उते संत है, उते भगत है, उते धार्मिक तल ते बुजुर्ग है, त्रिलोचन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 24 अवतारां दी कथा विच शिव जी नूं कहिंदे ने, त्रैनैनं, बरी पुत्र का ताहे को प्यो त्रैनैनं, ये तीन नेत्रां वाला। कहिंदे ने ये दो अखां खुलियां
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ। ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਟੰਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਖਰਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੋ ਖੈਰ, ਜੈਸੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬਿਰਧਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਖਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਣਾਉਣਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਠੇਠ। ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨੇ ਨੇ, ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਚਪਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਬਚਪਨਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੀ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਤੇ। ਇਹ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਜੋੜਿਆ, ਇਸ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਬਚਪਨਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬਚਪਨਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਅਰਥ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਖੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਚਪਨਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਥੇ ਤੇ ਲੱਖ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਲੌਣਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ। ਜੈਸੇ ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਪਰਚਾਵੇ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਮੂਲੀ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੜੀ ਅਪਾਰ,
तो खिडौना भी कोई बहुत वड्डा चाहिदा है, तो राम खिडौना है, खेडना है। ये तीन तरह की जिंदगी रेच तीन तरह के पड़ाव मिलते ने, बचपना, जवानी, वृद्धावस्था। समाजिक जीवन रेच, राजनीतिक जीवन रेच, धार्मिक जीवन रेच। चूंकि गल करिए धर्म दी, ते धर्म ही एक ऐसा विषय है जिनू समझ लईए ते सब कुछ समझ लिया, जिन्हू नहीं समझिया ते कुछ भी नहीं समझिया। महाराज दी बाणी दा फरमान बड़ा सुंदर, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। धर्म नू जानिया नहीं, परमात्मा नू जानिया नहीं, जानकारी बहुत कठी कीती है, पर कहिंदा मैं ए जानदा, मैं ए जानदा, मैं ओ जानदा, पर सकेने तू कुछ भी नहीं जानदा, अनजान है। की होया तू वनस्पति शास्त्री बन गया, की होया जे तू अर्थशास्त्री बन गया, की होया जे तेनो शरीर दी कुछ समझ पै गई है, वैद बन गया, की होया जे तेनो कोई थोड़ा जहा फिलसफा घोटना आंदा है, अजे जीवन दी मूल सता दा तेनो कोई बोध नहीं, अनजान। बहुत सारियां दा ज्ञान अनजानपने दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। इस नूं इंज कहिए, बहुत सारियां दा महान ज्ञान महान अज्ञान ते खड़ा होंदा है। आधारशिला अज्ञान है, उपर ज्ञान खड़ा कीता है, तो ओ सारी जानकारी बेमैनी हो जांदी है जितने चिर तक धर्म दा ज्ञान ना होवे। कहिंदन एथिन दा प्रसिद्ध संत सुकरात बच्चियां नाल खेड़दा खेड़दा बचपन दियां गल्लां अक्सर कहिंदा सी, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं जानदा, मैं सब कुछ जानदा, मैनूं सब कुछ बोध है, मैनूं सब कुछ दा पता है। पर सुकरात कहिंदे ने जद मैं जवान हो गया तो छोटे होंदे आ बच्चियां जो मैं बोल बोलदा सी ओ बोल जद मेरे सामने आउंदे सन तो शर्म नाल अखां झुक जांदियां सन। मैनू जवाना दी महफिल विच बैठ के कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा। और यही महापुरुष कहिंदे अज मैं बुढ़ा हो गया, एक गल मैं दावे नाल कहना और सही ते सच्ची, मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैनू कुछ भी नहीं पता। जिस जिस नूं भी मैं ज्ञान आखिया उते अज्ञान साबित होया। धर्म नूं जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया, प्रभु नूं जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया। सारी जानकारी रेत दा ढेर साबित हो जांदी है अगर परमात्मा नूं नहीं जानिया, ईश्वर नूं नहीं जानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने धर्म दिया इस अवस्थावां नूं जिस ढंग नाल खोले है, ओ मैं उन्हां दे शब्द दी विचार नूं पेश कर रहा। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गर परत गह ले हो अंगुरिया, सर्वन न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया।

रोजी दहिंद दा इसनों कोई बोध नहीं है। परचा रही है, खिड़ा रही है अपने हथां नाल, पर ए हथ की ने कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी बोध नहीं। अगर इस हिसाब नाल देखिए, बहुत सारियां नूं कोई बोध नहीं, असी कित्थे हां, किस दे हथां दे चां, किस दी गोद दे चां, इतना भी बोध नहीं है। बालक बुद्ध अचेत, बिल्कुल बचपना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु, धर्म दी दुनिया च मेरा जन्म ते हो गया, पर जन्म ऐसा जैसे बच्चा मां दी गोद च है, कुछ भी बोध नहीं। मुंह दे जबान है, बोल नहीं सकता। हाथ है गे ने, कुछ भी नहीं कर सकता। पैर है गे ने, चल नहीं सकता। दिमाग है, सोच नहीं सकता। कान है गे ने, नहीं सुन सकता। इस बच्चे नु कुछ भी नहीं पता सामने जो गुफ्तगू हो रही है की है, दो बंदे जो कुछ बोल रहे ने की है, माता पिता जो कुछ बोल रहे ने की है, इनु कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, इनु कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जन्म होया तो बहुत सारे ना धार्मिक दुनिया दे जन्म ते हो जाता है, जन्म हो गया है। ये ऐसी किस तरह वेखांगे, मंदिर जान लग पे है, गुरुद्वारे जान लग पे है, पूजा पाठ करन लग पे है, बाणी पढ़न लग पे है, कथा कीर्तन सुनन लग पे है, अमृत वेले उठन लग पे है, कर्म कांड विच प्रवृत्त हो गया है। लेकिन ये सब कुछ की है, कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी पता नहीं। इस तरह हो रहा है जैसे गोद देच बच्चा है, दूध पी रहे है, खिड़ाया जा रहा है हथां देच, सुलाया जा रहा है गोद देच, पर उसकी अवस्था जो सब कुछ अचेतमई चल रहा है। दूध पीना भी अचेतमई चल रहा है, हथां देच खेड़ना भी अचेतमई चल रहा है। धार्मिक कर्म सारे दे सारे अचेत खड़े ने, सचेत नहीं है, सावधान नहीं है। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु, जन्म हो जाना ही काफी नहीं, जीवन भी ते मिलना चाहिए। बच्चे दा जन्म हो गया है, इसको कोई सामाजिक जीवन नहीं। बच्चे दा जन्म हो गया है, इहदे कोल कोई राजनीतिक जीवन नहीं। बच्चे दा जन्म हो गया है, इहदे कोल कोई धार्मिक जीवन नहीं, कुछ भी नहीं है। जन्म होया है, लेकिन जिसनों कहने ने जिंदगी ये नहीं है, जिसनों कहने ने जीवन ये नहीं है, ये तो विकसित हो गया फिर जिस अज समा हो लगेगा। लेकिन ऐसा देखने दे चाया है, विकास हो जाता है सामाजिक जीवन का, रिश्तियां भी समझ आ जाती है, ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भरा है, अखां खुलदियां जा रही ने, समाजिक तल ते प्रौढ़ होंदा जा रहा है, जवान होंदा जा रहा है, रिश्तियां दी सोच समझ वधदी जा रही है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पड़ोसी है, लेकिन ये मेरा परमात्मा है, धार्मिक तौर ते ते अजे भी अनजान रह जांदा है, अजे भी मासूम रह जांदा है, अजे भी जो है बच्चा रह जांदा है। एक दिन राजनीतिक तल ते भी प्रौढ़ हो जांदा है, सियाणा हो जांदा है, और राजनीतिक लोगां दीआं गल्लां दे उत्ते उसका विश्वास नहीं बनता। अज तो 2500 साल पहले एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात ने कहा सी, और बड़े कीमती उसके पोल ने, अज ते सारी दुनिया पढ़ रही है, राजनीतिक ते अपराधी इक्को ही ज़हनियत दे मालिक होंदे ने, इक्को ही मनोविरति दे मालिक होंदे ने। फर्क सिर्फ इतना है कि जिथे छोटा अपराध है अपराधी है, जिथे वड्डा अपराध है राजनीतिक है। सुकरात दे ए बोल कहना पेगा अमर बोल ने, और इस तरह दे पुरुष वक्ती बोल बोल दे भी नहीं, अमर बोल बोल दे ने। उन्हां दा संदेश वक्ती संदेश नहीं आउंदा, अमर संदेश आउंदा है, और उन्हां दे संदेश विच कदी मुर्दमे नहीं आउंदी, क्योंकि अमर बोल हुंदे ने।

0: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण @604-581-1900

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्व पावने मम पावनं सर्व कर्तव्ये ममं कर्ता

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण @604581190।